0: समुदाय मा
1: रिलायन भरी
0: ऑन एयर
1: एप मा
0: अनि स्मार्ट स्पीकर मा भन्नुहोस्
2: प्ले बीएफबीएस
1: यू बीएफबीएस गोठा रेडियो हो।